का ज़ौक रहा तो ये कलाम सुनाऊंगा और आपका ज़ौक मुझे बताएगा कि ये कलाम सुनना चाहते हैं या नहीं। जब ये लाइन आए ना गलत बातें हैं तो आशिकों के हाथ बुलंद होने चाहिए।